कबाड़ी बना हूँ। सिड़ी सिड़ की वो वोनी रोई रोई की इजा आड़िया बिकमी था ही इदा सिड़ी सिड़ी की इथोनी नी दिवगा की इदा सिड़ी सिड़ी की हा नजर जा खानी नी दिवगा की जाबुनी हा नजर जा उखानी।